0: बिल्कुल जी बाकी गुड है, एंड देन लाइक बस वही है, हेल्थ बनी रहे
1: जी. सर अपां जदों ग्रांट्स की गल करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आ, बहुत सारे थानू सब तो ज़्यादा क्वेश्चन केड़ा आउंदा, क्योंकि ग्रांट्स ना एक ऐसा विषय आ, क्योंकि बहुत सारिया सोशल मीडिया से ऐसे लोग घूम रहे हैं कि थानू कमीशन दे दो, थानू पैसे दवा दें, पढ़न की लोड़ नहीं आ, थानू इदा करवा देंगे, कॉलेज की भी लोड़ नहीं आ, कोर्स भी करने की लोड़ नहीं आ. सो ये जिहड़े कैच आ ना, ये जिहड़े मैं लगता कि ये वो लोग आ, फ्रॉड लोग आ, जिहड़े सही कामां दे विच भी रोड़ा बन रहे. सो जिहड़े साडे परिवार आ, स्रोते आ, फिर सही काम नूं भी ना उन्होंने शक की नज़र नाल देखते आ. तुहानूं कोई इदां दे सवाल आउंदे आ कि तुसीं भाई कित्थे मिलदे हो, तुसीं किन्ना कमीशन लैंदे हो, कि तुहानूं वी इदां दे लोग आउंदे आ कि पुछदे थोड़े तों काम कितों होर करवा लैंदे आ, जां वह वैसे ही पहलां ही कितें फसे होंदे आ, कमीशन दे के आए होंदे आ, ते तुहाडे कोल आउंदे आ, कि वाकई इदां दी स्टोरियां थोड़े कोल आउंदियां?
0: बिल्कुल आती है जी, बिल्कुल. तो मतलब जो अच्छे से काम कर रहे होते हैं उनका भी लाइक लोग उनको भी शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि हम लोग पता नहीं लाइक, और आप मानेंगे कुछ लोग तो का स्वभाव ही ऐसा है कि वो चाहते हैं कि उनको ठगे, जगह जिनको लाइक जिनको नंबर की समझ नहीं आता. ओके, दूसरी बात, अब ऐसे अब नाइफ है, आप सब्जी भी काटते हैं उससे, और ब्रैम्पटन में तो इतना ज्यादा क्राइम भी चल रहा है चाकू से, ठीक है. तो डिपेंड है वो नाइफ को कैसे यूज करते हैं, सब्जी काटने के लिए, किसी को मारने के लिए, ठीक है ना, चीज हुई है. तो इसलिए लाइक आपने गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स जो हम कराते हैं आसान से है, मतलब आपने पढ़ना तो है, ये नहीं क्या फंडिंग लेके भाग जाएंगे.
1: हाँ, पढ़ना पैना. सो ये दसो कि बहुत इन्हों लगता कि बहुत सारिया जो एडवरटाइज सुनते हैं कहते पढ़ने की लोड़ नहीं है, बस पैसा लाओ जेब च पाओ, ये कनेडियन हार्ड अर्न मनी आ, जे तुसी स्किल डिवेलप करने वास्ते मनी आ तुहाडे वास्ते. सो ये ना सोचो कि तुसी कुछ नहीं करना तो पैसे थोड़ी जेब च आ जाएंगे.
0: अगर 7 कॉल आ रही है हमें तो एक बंदा एंड तक जाता है, एक. हाँ, ऐसा नहीं कि 7 के 7 रिटेन हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ना है. ऑनलाइन फुली ऑनलाइन क्लासेस आसान है, अटेंडेंस लगानी है, असाइनमेंट देनी, आसान से कोर्स है, ये नहीं कि कोई फैसल है बहुत बड़ा.
1: सो सर जिहड़े तुसीं आपां जदों ग्रांट दी गलबात आपां कर रहे हैं, सो किन्नी क मान लो कि फैमिली ऑफ 5 आ, 2 बच्चे आ, हसबैंड वाइफ आ, दोनों पढ़ना चाहते आ, इनकम घट आ, पढ़ के स्किल डिवेलप करना चाहते आ, तो जां उन्हां दे बच्चे यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहे आ, वड्डे बच्चे आ, तां वी उन्हां दी फंडिंग उन्हां नूं मिल सकदी, तो किन्नी क मिल सकदी आ?
0: बिल्कुल जी, ये अगर बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं किसी फैमिली के, तो भी वो डिपेंडेंट ही काउंट होते हैं. तो लाइक इस देश में चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम है, इसका मीनिंग ये होता है कि एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, ठीक है. अगर कोई किसी की एज 40 साल है, आप ये नहीं कह सकते वो पढ़ क्यों रहा है, उसने भी टैक्स भी वही पढ़ रहा है. तो आप जैसे मैंने कॉलर को सुना, वो कह रहे थे कि लाइक भैया तो अंकल सेकंड करियर चेंज नहीं कर सकते अपना करियर, कैनेडा में एक बंदा कम से कम 3 या 4 करियर चेंज करता है अपना. आज पहले आप कुछ और करते थे, आप रेडी पे हो 1 साल से, राइट? तो बीच में चलता रहता
1: है
0: चेंजेस. सो इसलिए आपको हर फ्लेक्सिबल रहना होता है इस देश में, और स्किल डेवलप चलता रहता है पूरी लाइफ लॉन्ग इन देशों में. इंडिया में ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा है. ओके, सो इसमें फैमिली अगर आपकी 4 है तो 80,000 की फंडिंग मिलती है, 40,000 ग्रांट है, 40,000 लोन है, गवर्नमेंट आपको दे रही है, मैं नहीं दे रहा, जरिया है मैं एक बस, ठीक है. और बाकी अगर 100,000 की फंडिंग है, तो लाइक अगर फैमिली 5 है तो 100,000 भी आता है उनको, उसमें से 50,000 ग्रांट है, 50,000 लोन है, आसान से कोर्स है, इजी टू पास है, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक. बट सबसे बड़ी चीज आपकी इनकम अगर कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट में, ज्यादा नहीं कह रहा, कम है, किसकी कम होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऊबर ड्राइवर, हाउसवाइफ, ट्रक ड्राइवर, तो ही आप हमें कॉल करें. बस अगर 70,000 से कम है इनकम आपकी, तो ही आपको इसका फायदा है सिर्फ.
1: ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ
0: ਹਾਂ. ਸਾਲ ਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਮਰਬਤ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ, ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਰ ਵੋ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਮੈਂ ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਬੁਲਾ ਰਹਾ ਥਾ,
1: ਹਾਂ
0: ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਹਮਸੇ 3500 ਉਸਨੇ 3500 ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹਮਸੇ.
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੀਸਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਲਾਈਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ, ਕਹਤੇ ਕਿ ਸਰ ਵੋ ਆਂਟੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਥੀ, ਆਜ ਵੋ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਤੀ ਸਰ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਾ ਆਪਸੇ ਥਾ, करा गई और से लिया, मीठी बातों में ले लेते हैं ना लोग, मीठी बातों वाले बड़े बैठे मार्केट में, मीठी बातों वाला छुरी मारता है, मैंने तो नोटिस करा लाइफ में, मेरा ये मेरा एक्सपीरियंस. ओके, तो उसमें उन्होंने कई और से काम कराया, ठीक है. अब वो फर्जी हार्ड कोर्स में, अब कहते बेटा मेरे असाइनमेंट बना दो, एग्जाम कर दो, बताओ हमारा अपना काम इतना, हम कहां से किसी और की मदद करें, हमारे क्लाइंट होते हम करते, ठीक है. तो मतलब लोग ਲਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਭੀ ਕਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਵੈਰਾਇਟੀ ਆਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਹਮ ਸਹੀ ਕਾਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਸਹੀ ਕਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਹਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਂ ਲੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 199 ਜਾਂ 499 ਛੋਟੀ ਸੀ ਫੀਸ ਖਰਚਾ ਚਲਾਣੇ ਕੇ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਕੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਕੋ ਪੈਸੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਸਾਤ ਬੰਦੋਂ ਕਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸ ਹੈ, 1000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੀਟ ਕਾ ਆਫਿਸ ਆਏ ਕਾਮ ਕਰਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ ਹਮੇ ਕਾਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ।
1: ਸੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ।
0: ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 218 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਵਰਡ ਹਰਨਟਾਰੀ ਡੈਰੀ ਤੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੈ ਬਟ ਸੋਰੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇਤਨੀ ਕਮ ਫੀਸ ਹੈ ਮਾਰੀ 199 ਜਾਂ 499, ਕਿਆ ਡੀਲ ਲਗਾਏ ਇਸ ਪੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ, ਆਪਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇ ਆਨੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇ ਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਨਓ ਕਾ ਫਿਗਰ ਬਤਾਤੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਬਤਾਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੈ, ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਬਤਾਤੇ ਆਪ ਹਮੇ, ਹਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮੈਂ ਡਾਲਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸਿਸਟਮ ਮੇ, ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਆਪ ਕਿਤਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਉਸੇ ਬੜਾ ਸਕਤੇ ਨਾ ਹਮ ਉਸੇ ਕਮ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਤੋ ਜੋ ਆਪਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੋ ਬੜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਕਾ ਤੀਨ ਬੱਚਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਾਈਲ ਮੇ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਤ ਤੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੈ, ਹਮ ਓਰਿਜਿਨਲਿਟੀ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਏ, ਨੰਬਰ 437-264-3175 437-264-3175, ਆਪ ਮੈਂ ਅਭੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ 437-264-3175 437-264-3175
1: 437-264-3175 437-264-3175 ਤੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ 437-264-3175। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਗਪਾਲ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਸੋ 905-673-3337 905-673-3337 ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ। 905-673-3337

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.

परमात्मा के नाम तो बिना मनुख जो भी मंगता है वह साधन हो सकता है सुख नहीं। सुख केवल तो केवल

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: इंडियन पंजाबी बाजार 115 फादर टोबन रोड ब्रैम्पटन विच भारतीय ग्रोसरी दा भंडार इंडियन पंजाबी बाजार जिथे ताजे फल ते सब्जियां दालां मसाले ते आटा गल की थवाडी ग्रोसरी दीयां सारीयां लोड़ां पूरियां कीतीयां जांदियां ने। तुसी उहनां दी मीट शॉप तों मच्छी चिकन ते गोट मीट भी खरीद सकदे हो। इन्ना ही नहीं मिठाइयां ते टेक आउट भोजन दा भी प्रबंध है। भारतीय ग्रोसरी मीट ते मिठाइयां लिस्ट दा इक नाम याद रखो, इंडियन पंजाबी बाजार।
2: GTA दी बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज नाल मौका मिल रहा है वधिया डॉलर कमान दा ते गड्डी चलाउन दा।
3: अल्फा ट्रांस नु चाहि देने AZ ड्राइवर्स, टीम ड्राइवर अते ओनर ऑपरेटर। वधिया पे पैकेज अते 12 महीने कम ते मान सत्कार भी पूरा कर देने।
2: आज ही संपर्क करो लखी सैनी नु 905-799-1525, 905-799-1525 या विजिट करो 105 ईस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन।
4: ओ सर आ गए,

सो दुरुस्त रहो और चढ़दी कला दे विच रहो, तुसीं चंगा सोचो, सोचना चंगा पैना दिमाग दे नाल, ते असीं दिमाग दे नाल शैतानियां करदे आं, निक्कियां निक्कियां खामियां लभदे आं इस मिट्टी चों, इस फिजा दे विचों, ते ना लभ्या करो। याद रखो कि सुंदर शक्तिशाली ते चुस्त दिमाग परमात्मा ने तुहानू जीवन नू महान बनाउण लई बनाया आ, ना कि इधर छोटियां मोटियां खामियां कढ़न नू।

0: वहां एक पोस्टर लगा था, अगर आप रिफ्यूजी क्लेमेंट हैं आपके लिए फिजियोथेरेपी फ्री, कायरोप्रैक्टरी फ्री, जूते की सोल फ्री। अब वो जूते की सोल आप और मैं अगर लेंगे तो हमें $50 की मिलेगी। जब वो लोग गवर्नमेंट को बिलिंग करेंगे वो $300 लेंगे उनसे। तो गवर्नमेंट जब इन चीजों पे इन्वेस्ट कर सकती है बिल खोल के, खा खा करके वो बिलिंग बजाए जा रहे हैं क्लिनिक वाले, रिफ्यूजी क्लेमेंट, रिफ्यूजी ग्रुप नहीं कह रहा मैं, रिफ्यूजी क्लेम कर रहा जिसमें, और गवर्नमेंट खुद कहती है कितने लोगों ने गलत तरीके से क्लेम करा, जो उनको इतना बेनिफिट गवर्नमेंट देती है तब तो मेहरानी होती नहीं है। जब गवर्नमेंट एडुकेशन में फंडिंग करती है तब लोगों को लगता है कुछ कैच हो, गवर्नमेंट फंडिंग क्यों कर दी है, ऐसे भी लोग हैं हमारे। तो पहले वो रोकिए जो गवर्नमेंट इतना रिफ्यूजीज पर जगह पर लगा रही है जहां पर लगाना भी नहीं चाहिए। ओके, फैमिली ऑफ फोर में 80,000 की फंडिंग बनती है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, फुली ऑनलाइन कोर्स करते हैं, घर के कम्फर्ट से करते हैं, और उसमें एग्जामिनेशन नहीं नहीं नहीं है, असाइनमेंट है आसान सी, आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो, लाइक इसमें कुछ भी एंड टू एंड सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। 80,000 में से 40,000 ग्रांट है आज की डेट में, और 17 दिन बाद एनरोल करेंगे तो 80,000 का 80,000 ही लोन आएगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है।
1: ठीक है ठीक है। अच्छा आप अपना एड्रेस और फोन नंबर बताएं और आज आप ओपन हो, ठीक है ना?
0: हाँ जी हाँ जी, आज हम ओपन है। हमारा एड्रेस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, स्वीट नंबर 212। आप आ सकते हैं आज भी, लाइक हमें 8 साल हो चुके हैं जी बिजनेस में, आज स्टार्ट नहीं करा, बहुत टाइम हो गए करते हुए, बहुत लोगों को ऑलरेडी असिस्ट कर चुके हैं। एंड देन लाइक हमने ना सब कुछ सिंपल रखा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं आपका, आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट हो गया फैमिली का, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आप मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट। सिंगल बंदों को फायदा नहीं है फंडिंग, उनको सिर्फ लोन आता है ग्रांट से फीस निकल जाती है तो उतना फायदा नहीं है उनको, हम रिकमेंड नहीं करते। अगर आप मैरिड है या सिंगल मदर है विद किड्स, आपको अच्छा बेनिफिट है इसका, और अब नोटिस ऑफ असेसमेंट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें क्या एडिटिंग करेंगे आप? जहाँ कारीगरी नहीं है वहां कमीशन नहीं है, वहां सेटिंग नहीं है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं, तो बस इसमें कुछ कैच है ही नहीं दूर दूर तक। जब गवर्नमेंट एलजीबीटी को 100 मिलियन दे सकती है और प्राइड परेड की सिक्योरिटी में 7 मिलियन की ग्रांट दे सकती है, 7 मिलियन की, तो गवर्नमेंट आपकी एडुकेशन में स्पेंड कर रही है कुछ टाइम और तक, एनरोल करें, पीछे ना रहे, आपके सारे दोस्त एनरोल हो चुके हैं। और एक और मैंने चीज देखी है, लोग ना अपने दोस्तों को ज्यादा बताते नहीं है चीजें, खुद एनरोल हो जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, स्किल डेवलप कर लेते हैं, औरों को नहीं बताते, कहते हमारा फायदा हो गया, बढ़िया है ना,
1: कई दूसरों का फायदा देख के खुश नहीं ना होते, कई कईयों को होता है कि हमारा फायदा हो, दूसरों का नहीं होना चाहिए।
0: एक बार अभी क्लाइंट हमारी बिल्कुल हमारे ऑफिस आए, एक क्लाइंट कहते ये लो सर आपकी $200 फीस, उन्होंने जो इस कोर्स में कराई थी फीस दिया हमें काम होने के बाद, कहते जिसने मुझे रेफर करा है उसको मत बताना मेरा अप्रूवल आ गया। हमने पूछा क्यों, कहते उसने मेरे से $1,000 मांगे अप्रूवल पे।
1: अच्छा
0: मतलब वो हमारी चीज दोस्तों है जिन्होंने रेफर करा है उन्होंने उनसे $1,000 मांगे हैं, तो मतलब ऐसा भी चलता है कुछ है ना मार्केट में, है ना? तो देयर इज नो, हमने एंड टू एंड हमारी चीज करी $200 या $500 है, मतलब $199 या $499 है, काम होने के बाद दे दिए, 30 से 90 डेज में आपके अकाउंट में फंडिंग आती है, हमारे अकाउंट में नहीं आती, उसके बाद आपने अपनी ईमानदारी से हमारी फीस देनी होती है, 199 या 499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स, कोई कमीशन परसेंटेज नहीं है। तो नंबर नोट करें, अभी कॉल करें, ऑफिस आए, 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75। आज की छुट्टी का आनंद भी लें, स्किल भी डेवलप करें, आसान से कोर्सेज करके फंडिंग हासिल करें, आज टाइम निकालें, आपकी एक आपका एक कॉल या आपकी एक मूवमेंट आपको 30 से 100,000 की फंडिंग दे रही है जी। कॉल करें 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75।
1: वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू जी। बिल्कुल जी, 437-264-31-75 ते तुसी सरांश नाल गलबात करो ते पूरी जानकारी लो, ते इस ग्रांट दा, इस एजुकेशन दा थानू बहुत फायदा जेड़ा होने वाला, ते नाल दी नाल नंबर तुसी नोबल फ्रेश फूड दा भी ले लो, क्योंकि खाना पीना बड़ा जरूरी है, खान पीन तो बिना तो कुछ भी नहीं है ना। ते देखो जे ना इंडिया आपां जेड़े जाके आउंदे आ फिर पता लगदा, उत्थे तुसी ग्रोसरी करन जाओ ना ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਈਵਨ ਕਿ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ

0: लो जी, पूरा शब्द सुना दिता। सो जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। सो एक फिल्म दे विच सिगा है ना, सो भाजी ने कहा ना, और वाकई मोहम्मद रफी साहब ने गाया होया तो फिर कमाल ही हो जाती है। ते लो जी, अपा हुण मॉर्गेज दी दुनिया चलते हैं। नरदेव सिद्धू जी साडे नाल जुड़े हैं। नरदेव जी, स्वागत थोड़ा।
1: ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ।
0: ਜੀ
1: ਤੁਹਾਡੇ
0: ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
1: ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
0: ਜੀ
1: ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੋਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਘਰ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਰਗੇਜ ਰਿਨਿਵਲ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 647-247-5503। ਨਰਦੇਵ ਸਿੱਧੂ 6472945503। ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
0: ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਰਦੇਵ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਵਰਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰਦੇਵ ਸਿੱਧੂ, 647-294-5503 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੁਆਬਾ ਟਰੈਵਲਸ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਦਾ, 905-673-1400 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ 1600 ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 1700 ਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੇਟ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਦੁਆਬਾ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ, ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ। ਨੰਬਰ 1-905-673-1400 ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਟਰੈਵਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੈਸੇ ਹੈ? ਹੈਲੋ
1: ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹਿਣ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਮੇਰੀ?
0: ਜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੈਸੇ ਹੋ?
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 159 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਜ ਹਮਾਰਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ।
0: ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਪ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਕੌਨ ਸੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਕੋ ਸਿੱਖੇ ਹੋਂਗੇ, ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ ਹੋਂਗੇ, ਮਗਰ ਵੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਜਬ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੋ ਬੋਲੇਂਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਯੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਵੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਯੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ। ਜੋ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੋਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ 5-star ਹੋਟਲ ਮੈਂ, ਬੜੀਆ ਦਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੂਰੇ ਬੜੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਮੈਂ, ਲੰਬੈਗਿਨੀਜ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਨਕੀ ਇੱਕ ਅਦਾ ਮੁਝੇ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਹਯਾਤ ਏਜੰਸੀ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟੋ ਮੈਂ, ਤੋ ਵੋ ਬੇਰੇ ਸੇ ਬੋਲੇ ਕੈਨ ਯੂ ਪੈਕ ਦਿਸ ਲੈਫਟ ਓਵਰ। ਅਬ ਆਪ ਸੋਚੀਏ ਖਾਨਾ ਫੇਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਲੋਕ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਫੇਂਕਤੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨਸੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਤਾ, ਉਨਕੋ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇਤਾ, ਇਤਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ, ਖਾਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ, 100 ਆਦਮੀ ਕੀ ਦਾਵਤ ਹੋਤੀ 150 ਬੰਦੋਂ ਕਾ ਬੁਲਾ ਲੇਤੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 150 ਮੈਂ ਵੀ 25 ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਬਾਈ ਖਾਨਾ ਤੋ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਬ ਬੋਲਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ, ਤੋ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਫੇਂਕ ਦੇਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਹਾਂ ਦੇਖੇਂਗੇ ਲੋਕਲ ਜੋ ਕੰਤਰੀ ਰੋਡ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋਤੇ, ਵੋ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਹੋਤੇ? ਇਸ ਲਈ ਹੋਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਤੋਂ ਕਾ ਖਾਨਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਕਾ ਖਾਨਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਵੋ ਕੂੜੇ ਕਚਰੇ ਮੈਂ ਫੇਂਕ ਰਹੇ। तो ये बातें हैं, गौर करना चाहिए। और एक बड़ा चंगा शेर है आज के ऊपर, वो ये है कि काश ले जाते कभी मांग के आंखें मेरी, काश ले जाते कभी मांग के आंखें मेरी, ये मुसव्विर, मुसव्विर यानी पेंटर, ये मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने वाले, और सबने पहना है बड़े शौक से कागज का लिबास, जिस कदर लोग थे बारिश में नहाने वाले। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, मैं सोचता हूँ ये कैसा आती है, प्रेरणा कैसा होती है शायरों को, ये कैसा लिखते हैं ये लोग, ये हमें क्यों नहीं आते ऐसे ख्यालात? तो इसका जवाब है, शायर कवि पैदाइशी होता है, बन नहीं सकते आप, ज्ञान से कवि नहीं बनते, कवि बनते हैं सिर्फ परमात्मा की जो इच्छा होती है उसके अपने वरदान पे बनते हैं, ये है पॉइंट।
0: बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। सारों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, खुश रहिए, एंजॉय करिए, और कल ऑफिस खुलते जरा डबल काम करिए, क्योंकि आज छुट्टी जो ले ली आप,
0: ठीक है
1: काम पे तवज्जो दीजिए, छुट्टियां मत लीजिए, इससे कंट्री पीछे आ जाता है। थैंक यू सो मच,
0: बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, आज 159 यानी कि 159वां कैनेडा डे हैगा, सो देख लो 159 साल हो गए साढ़े कैनेडा बने नू, ते इन्ना वधिया कंट्री है, स्वर्गां वर्गा हर एक चीज़, आबो हवा मौसम हर एक चीज़ आ तुसी नज़ारा लैंदे हो इत्थे, ते रूल्स रेगुलेशन जिन्ने वधिया इत्थे हैगे, इत्थे तां वैसे जिवें आपां देखदे आ कि एक्सीडेंट एवें बेमतलब तो कर लैंदे आ लोक, कहिंदे आ वी एक्सीडेंट हो नहीं सकदे इन्ने वधिया कंट्री दे विच, इन्ने वधिया जिहड़े रूल्स हैगे रोड्स दे ट्रैफिक रूल्स, पर असीं उहनां नूं फॉलो नहीं करदे प्रोपर, गलती इत्थे हो जांदी आ। यानी कि असीं ना हर एक चीज़ कहिंदे आ वी लै राइट नूं ज़्यादा आपां तवज्जो दिंदे आ ड्यूटी नालों, जिवें ना हुण असीं मैं पोलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है उहदे विच हमेशा इह कहिंदे आ राइट्स एंड ड्यूटीज़ इक्को सिक्के दे दो पहलू है, जे राइट सानूं मिलिया तां साडी ड्यूटी भी है, जे ड्यूटी च आपां अपनी पे करदे हाँ प्रोपर तां सानूं राइट साडा मिल जांदा। सो रोड्स दे उपर हर एक चीज़ जिहड़े ट्रैफिक रूल्स हैगे जे असीं प्रोपर फॉलो करिए ना, मजाल है जे किसी का वाल भी बांका हो जाए, हो ही नहीं सकता, पर नहीं असी करते। जिवें हुण जे ग्रीन सिग्नल होया होया तो असी कहने बस हुण साडा ही राइट है, पर जदों आपां ड्राइविंग सीखते हैं है ना, जदों टेस्ट देना हुंदा उदों देखो किन्ने आपां विजिलेंट रहिंदे आ, या जदों सीखते हैं उदों किन्ने विजिलेंट रहिंदे आ, स्टॉप साइन ते रुकदे आ प्रोपर, ते उस तो इलावा लेन चेंज किवें करनी है वह प्रोपर करते हैं, पर जदों असी सानू लाइसेंस मिल गया फिर कहिंदे आ वी साडी मर्जी असी जिवें मर्जी करिए, ते जदों वह सिखाउंदे आ सानू जिहड़े अपने ड्राइविंग स्कूल्स वाले आ वह किन्ना वधिया दसदे आ कि तुसी लेन चेंज करनी है कदों करनी है, वैन यू फील सेफ, थानू क्योंकि अगे पिछे सारा देखना, हुण इह तां नहीं उहने कहता ते भी हुण लेन चेंज करो फटाफट नाल ही दब दो कांटा उधर नूं चले जाओ, ते जदों ट्रैफिक लाइट थोड़ी ग्रीन होई हुई है तुसीं इंटरसैक्शन नूं क्रॉस कर रहे हो उदों थोड़े ब्रेक ते पैर होने चाहिए, उन्नी कु स्पीड होवे जे बाई चांस कोई अगे आ जाए किसी भी तरीके दे नाल ते तुसीं ब्रेक ला सको। कई तो जे 60 दी 50 दी स्पीड है उस एरिया दे चल बई चलण दे 70-80 ते ते वो कित्थे रुक जूगी है ना। सो इस करके ये सारिया चीज़ां होर जिवें फूड दी गल है वह वेस्ट ना करो किते भी, चाहे घर है बाहर है कितने, हुण जिवें आपां कितने जाने असीं कहने आ भी भर लो प्लेट पता नहीं मुड़ के मिलना पता नहीं, नहीं नो पहला उन्ना कु लै लो जद खा लिया फिर पा लो, उत्थे कहड़ा रोकना किसी ने थोनू, चाहे गुरद्वारा साहब दे विच जाने किसी रिलीजियस प्लेस ते जाने वेस्ट ना करो, किन्ना फूड नू बनाउण वास्ते मेहनत शुरू तो लैके एंड तक करनी पैंदी है। सो इस करके हर एक चीज़ पानी हो गया मतलब हर एक का ध्यान रखो, हुण पहलां की हुंदा सी इत्थे किसी दे किते जांदे सीगे एक दूजे लई तुसी डोर ओपन कर लैंदे सी रोकदे सी खोलदे सी, हुण कई बार जद कोई देखदा भी कोई परवाह ही नहीं दूजा करदा है ना, कोई थैंक यू नहीं कहिंदा ते थैंक यू पाउण दी आदत पाओ, कई करदे ही नहीं, वो कहिंदे छड्ड परे इहने खोल तां लंघ जांदे, ओह दूजा अगला कहिंदा मैं कोई नौकर आ वी तुहाडा खोलिया, ओह तां चलो इक करटसी सेक ओह करदे आ है ना इक दूजे दी हैल्प, पर जरूर ध्यान रखो जी। ते लो जी हुण गीत सुणीए आपां फिर कॉल बाद च लैंदे आ, हले वेट करो बई कॉलर साडे, ते आ गीत। अच्छा मैनूं ना भाजी ने गीत भेजिआ पर मेरा इत्थे नहीं भाजी निकल रहा, अमरजीत चीमा जी ने मैनू गीत कल भेजा, मैं इत्थों ही सुना दिंदी हाँ अपने फोन तो ही, इत्थे मैं लभी जा रही USA वाला शो हो ही जा रहा वो नहीं हो रहा, तो इत्थों ही थोड़ा जहा सुना सुन लें आप, चलो चलो चलो

0: रात हमें छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रका दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: जेकर थोड़ी एज 40 साल तो घट है ते अगले 20 साल लई तुसी लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दा कॉम्बो प्लान लेना चाहते हो ता $99 ले सकते हो। ज्यादा जानकारी लई तुसी मेनू कॉल कर सकते हो 647-7623-40 647-765-2340। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਫੇਰ ਬਦਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 647-7563-40 6477-65-2340। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
3: जी सत श्री अकाल, मैं दोबारा इसलिए हाजिर हुआ कि एक आप जो रोड की जो बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज आपके प्रोग्राम के जरिए सामेन से बताना चाहता हूँ, सुनने वालों से, श्रोता से, वो ये कि जब कंस्ट्रक्शन का इलाके से गुजरते, मैं देखा सारे ड्राइवरों में बात होती, रुकते और उसको पलट के राइट या लेफ्ट जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा वहां रुक कर देखते आप, तो एक सेकंड के लिए रुको या एक मिनट के लिए रुको, मैं पूछ रहा हूँ क्या कर सकते हैं आप उसको? आप उसकी हेल्प कर सकते उतर के, या एक्सीडेंट हो जाता आप देखते गौर से, बिल्कुल ब्रेक करके देखते, लोगों को देखा कैमरे, नहीं स्लो नहीं होना, वहां से तो तेजी से गुजरना चाहिए, पुलिस का काम है ये बात बोलना, सिटी ऑफ टोरंटो,
2: जी उनको जाना चाहिए, मैं कह रही हूँ रुक के देखने लग जाते हो ट्रैफिक जैम हो जाता पीछे,
3: नहीं देखने की जरूरत ही नहीं, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ बहन जी, देखने से आप पैरामेडिक है, आप फायर ब्रिगेड है, आप पुलिस है, कौन है, आप पंचनामा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सिवाय आपके, अब जो आपके पीछे जो आ रहा उसको आप खराब कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, ये ना करिए, तेजी से गुजरीजिए वहां से, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। थैंक यू, बस ये बोलना चाह रहा था। थैंक यू।
2: रेशम जी सत श्री अकाल, फटाफट। हाँ जी हेलो रेशम जी, की हाल चाल?
4: लो
2: जी, हैप्पी कैनेडा डे हो गया, अपना समा भी हो गया जान का, मेरे कॉन्टेक्ट करना 647-7563-40। थोड़ा कैनेडा डे होवे वधिया, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Don Platinum, the better grease getter. This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल लिंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-310
2: Yamilo 70 Delta Park Boulevard Unit 11 Brampton
3: Aap Punjabi aaye
4: IPL chal raha hai only on Karo Stream Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
5: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीजा के मर्दा के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल

0: insurance specialist from Top Face Insurance Agency.
1: Mama, इस बार मैं भी कृष्ण बनूंगा
2: और मैं कृष्ण के लिए माखन लेकर आऊंगी।
3: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
4: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आए और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाए। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
5: करता आपा एड़ा वड़ा एना सोना ले लिया, हुन अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं।
6: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, एलईडी टीवी, सब एथों ही लवांगे। एना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीने च करनी है, वो भी बिना किसे ब्याज दे। होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828, 905-450-2828।
4: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कने

Brampton या फिर पीछे लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुन चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900

0: है मेरी जान, बस हम तुमको प्यार करते हैं, यही तो पंगा है। हेलो
1: हेलो भाई, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।
1: ये खान साहब आई।
0: खान साहब?

0: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 9054502828 905-450-2828
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
7: ਮੱਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੌ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵਰਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ